मुड़के कदे भी आवे हाथ ना, मुड़के कदे भी आवे हाथ ना, पानी जड़ा पुलाए तो बह रहा, पानी जड़ा पुलाए तो बह रहा।

तुम मात पिता तुमरी कृपा मैं कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा तुमते हो ए सो तुमरी गाता मेता नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आई फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आई श्री हर किशन ते आईऐ जिस डठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवै ताई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहिया की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तनहा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां संग निभाही तनहा दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाह पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत

0: हरि आपे बोल बुलावे, हरि आपे पंच तत्व विस्तारा, पिच धातु पंच आप बावे, जंदा निग सतगुर मेले आपे, हरि आपे चगर चुकावे, जंदा निग सतगुर मेले आपे, हरि आपे चगर चुकावे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई, राम नाम आ खुद दिया एका निवलाई, राह राख लिये तें रखण हार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक किरपा भई प्रभै सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा, मन में चित बो चित मनी उदम कर उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीत आके है करते का हुए बीचारो, तित कर गावो सोहिला सेवर हो सेजन हार। तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला।

0: अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु,
1: गज के जकारा जावे निहालो जावे, धन धन श्री गुरु गोबिंद मन फरे पावे, गज के जकारा बुला निहाल होवे, धन धन श्री गुरु गोबिंद अग्नि मन पावे, गज के जकारा जावे निहालो जावे, धन धन श्री गुरु गोबिंद मन फरे पावे, खुशियां दे जकारा अपना भी निहाल होवे, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मन पावे,
0: बोले सो निहाल देखते पंथ की राज करेगा, चूल ते निशान है, लाग ते दीवान है,
1: बोले सो निहाल,
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बलहारी गुर अपने विटो जिन कारज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जप हो सुख फल।

फिर देह गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरह दूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही।

न नानक भव है न भिख। ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोहह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमार। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर तिसते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाल हो रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिब फुरमाए तिब तिब पाहे। जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही कोथाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हथ पैर तन देह पानी तो तै उतरस खेह। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए। भरिया मत पापा कै संग।

नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान। सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्ताथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन सित कवन वार। कवन सिरती माह कवन जित हुआ आकार। वेल न पाईया पंडती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।

ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड़ी ऊंचा हुआ कोए ते सूचे को जाने सोए, जेवड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तेल ना तमाए। केते मंगे जोद पार, केत्या गणत नहीं विचार। केते खाप तुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाही, केत्या दुख भूख सदमार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खाए काखण पाए, ओ जाने जेतिया मुह खाए। आपे जाने आपे दे, आखे से पे के ई के। जिसनों बख्शे सिफत साला, हर नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आवह अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करह वख्याण। आखे बरमे आखे इंद, आखे गोपी ते गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव। केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे, ताख न सकह केई के।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वा प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज केह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वा सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अवाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएक नमस्तं अनेक नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं तर्माने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तरवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं मजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं नृतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है लेख है भेख है नाम है काम है अते है अपेह है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है अगंज है पंज है चूज है चंज है अमीख है रफीक है तंद है बंध है निर्बूज है सूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है कर्म है परम है अजीत है अपीत है अवाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे

नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध कर्ता अदो अर्ध अर्धं अगं ओघ हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृसं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदि सिद्धिं निवासी चारपट छांद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छांद त्वा प्रसाद आद रूपन आद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद अशेख देश और न पेश जा

ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल छांद तु अप्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीख मितो मीख सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनुल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी दहंद हैं के राज ग्रहंद हैं करीमुल कमाल हैं के सुनुल जमाल हैं गरीमुल खराज हैं गरीबुल नवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हरासुल फकन हैं कलंक प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं अंगंजुल गनीम है रजाए करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है देशुल लेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के जब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के तलंग अनंग है के मितो भंग है मदभार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जंग सन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आ जान बाहु एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात अज जना बात अंचन जगात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणा लिया है हर कालिया है खलखंडन है मैं मंडन है जगते सुर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जन है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है स्वंबर है सर्वेश्वर है जगते सुर है ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथप्पा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है बसवंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे अखिजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बांके अभंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी काम एक श्री छंद जय अलय भय भय अपू अजु नास अकास अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख नाम काम अगाटा नाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे न रूपे न रेखे अकरमंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी जाये बे विभूते गजाय भगनी में हरियंग करियंग क्रीमल रीमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं भव सुपंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते एको ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सोईये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा अधिक
संत समूह अनेक मत्ती के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली विदन आवत शीस ना जात विचारे। एते पय तो कहां पय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिनंत को अंत के धाम सुधारे। तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है। पौन आहार जति जत तार सब सुब चार हजार को देखै। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबा सो साज सुना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे। तोर हरी नोर मुसन मत मतंगन मान मलेंगे। श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरिया विचार वीर अपार बड़े बरियार विचार है सार गिधार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बतनी चकचार लवैया। साहिब श्री सब को सरनायक जाचकन एक सो एक दिवैया। दान वदेव फनेंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बह पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सबैव लोक चपेंगे। मान अविंद्र गजिंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची फत अंत फसे जम फास भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रसें पग ते नर फेर न दे तरेंगे। कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो। नाथ फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो। बास की ओबिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साज गहो सुन ले हो सब जन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पान पूज तरयो सर काहू ले लेंग करे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पुशा पुशीस निभायो। कऊ बतान को पूजत है पस कऊ मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कऊ बतान को पूजत है पस कऊ मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काभो आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहू जो वर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जुजू करियो रच्छा। राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत साहे प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्म

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कब हूं तुम, मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते वदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद रियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पैव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, अरंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भज खान बौहर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य वार सिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्तोई तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकटने हैं, रचा हुए ताहे सब काला, दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला, दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह छुए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, कृपा दुष्ट खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी।

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे मेक न जान्यो। श्री असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो।

आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया।

निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार ताई तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजे हर वासना सुमानी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए है तिव चला स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए हे। से हर हर सदा त्यावे, जिसनों कथा सुनाए हे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सचे साहिब ज्यो पावा तिव चलावे। एहो सुहला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहला, सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन धुरों लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करै गल्लां, गली किने ना पाया। कह नानक शब्द सुहला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो, पवित संगत सबाइया। कहंदे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजाय बिन सहजै, सहसा न जाए नह जाए। सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वह शब्द लागो हर स्यो रो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय ए सहसा उपजाए। जियो मैले बहरो निर्मल, बहरो निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बहरो निर्मल, बहरो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जनी खटिया भले से बन जा रे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय त्याए। अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परने। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो भवेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी त गावो गुरु केरी, बाणी है सरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित करै रसना, कहया कछु ना जानी। चित जिन का हर लाया माया, बोलन पई रवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित चढ़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्त आवो पाए, कह करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आवे खै गुरमुख सब जाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एक सस्यो लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप, विचार दे ततै सार न जानी। ततै सार न जानी गुरु बाजो, ततै सार न जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्हा हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अनदिन हर लिवलागै जागत रहण विहानी। माता के उधर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है वड़दाता, जे अगन मैं आहार पहुंचावे। ओसनो किहो पोहे न सके, ओसनो किहो पोहे न सकी। जिसनो अपनी लिवलावे, अपनी लिवा पे लाए। गुरमुख सदा संभाली है, कह नानके वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मैं, तैसी बाहर माया। माया अगन सभी को जेही करते खेल रचाया। जात सपाणा तो जमया, परिवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै,

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, अस्थिर भगत साध की शरण।

0: जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे,
1: निष्ठा कर को रख मन वाहे।
0: जिह प्रसाद सुगंधत तन लाभ है,
1: सिमरत परम गत पावे।
0: जिह प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: त्याए सदा मने अंदर।
0: जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जिह प्रसाद रंग रस भोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जाय, जिह प्रसाद तुझ सब को मन, जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावे। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही, जिह प्रसाद तेरा ओला रहत, जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र।

0: साधक संग अगोचर मिले,
1: साधक संग सदा पर खुले,
0: साधक संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साधक संग मनोर बैन,
0: साधक संग न कतहूं तावे,
1: साध संग सित मन पावे,
0: साधक संग माया ते भिन्न,
1: साध संग नानक प्राप्त सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु के संग महापनीत,
0: साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग नाही को मंदा, साध के संग नाही हो ताप, आपे जाने साध बड़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग न कब हूता वे, साध संग बस्त गोचर लह, साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उदार है,
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: जिस तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सो बासुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्वथान गम,
1: नानक साध के संग सफल जनम,
0: साध के संग नहीं कछ काल, साध के संग कलूखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सुहेला,
1: संग विश्रतार मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग ना बिरता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रित बसे,
1: नानक उदरे साध सुन जसे,
0: साध के संग सुनो हर नाओ,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग काट काट मीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने,
1: जेता सुने तेता बख्याने,
0: साध की उपमा ते

0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा मत वासी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन

0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिक जोन करमाए,
0: संतन कै दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत कै दुखन तेज

0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: संत पावे ता लय अवार।
0: संत का दुखी इयों बिल लाए,
1: जल बिहुन मछली तड़पड़ाए।
0: संत का दुखी पू

0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ।
1: जब जब जीवे नानक नाओ।
0: नाम के तारे सगले जंत।
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड।
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण।
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान।
0: नाम के तारे आकाश पाताल।
1: नाम के तारे सगला काल।
0: नाम के तारे पुरिया सब भवन।
1: नाम के सांगु दे सुन सरमन।
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए।
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए।
0: रूप सत जाका सत स्थान।
1: सत के बल प्रदान।
0: करतूत सत सत जाकी वाणी।
1: सत पुरख सा मैं समाणी।
0: सत कर्म जाकी रचना सत।
1: मूल सत सत उत्पत।
0: सत करनी निर्मल निर्मली।
1: किसे बजाए तिसे सापली।
0: सत नाम प्रभु।

0: आप सत की असब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो बरतिया
0: विस्मन विस्म पे।

0: अब नासी सुख अपने आसन,
1: जन्म मरण को काम नासन।
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए,
1: तब जम की त्रास को के सोए।
0: जब अभिगत अगोचर प्रभु एका,
1: चित्र गुप्त भी पूछत लेका।
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे,
1: कौन छुटे कौन बंधन बादे।
0: अपन आप ही चर्जा,
1: नानक अपन रूप आप ही परजा।
0: जय निर्मल पुरख पत होता,
1: बिन मैल कहो क्या तोता।
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
1: कौन को मान कौन अभिमान।
0: जय स्वरूप केवल जगदीश, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे। कर्ण करावन करने हार,
1: करते का नाई समार।
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
1: कवन माई बाप मित्र सत पाई।
0: जय सर्व कला आपे परवीन,
1: वेग देव कहा को जीन।
0: जब अपन आप उरतारे,
1: तो सगन सगन कहा विचारे।
0: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा,
1: कौन ठाकर कौन कहिए जेरा।
0: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
1: नानक अपनी गत जानो आप।
0: जय अशल अशेद।

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, धन सेवा सेवक प्रवान, जिस मन वसै सो होत।

सगल समिगरी एक स्कट माहे नौ निधि अमृत प्रभु का नाम सुन समाद अनहत तहनाद तिन देखिया जिसे आप दिखाए।

गुरु साहिब हो दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने आवे प्रवार तां खसमे का मैल पाए सी खसमे पावे सो करे मनुचंदिया सो फल।

हर प्रभ कृपा करे हर जप हो, सुख फल हर जन पाव हो। नानक कह सुनहो जन पाई, सुख सोहे लड़ा हर त्याव हो। सुन हर गुण पीने सहज सुपाए, गुरमत सहजे नाम त्याए। जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण भौ भागा। अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिन आन दिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सहज सुपाए, जुग मैं राम नाम निस्तारा। गुरते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे दिन राती। केल विख सब गवाए, सब को तेरा तू सबना का।

हर गुण गाव है तृप्त अगाही, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए, दह दिस पू

तू मेरो प्यारो ता कैसी भुखा, तू मन वसिया ता लगे ना दुखा। आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करा रहे सन भाई जगदीप सिंह जी, दरबार साहिब वालियां दा रागी जत्था। बहुत बहुत धन्नवाद संगतां वल्लों। हुण ज्ञानी प्रगट सिंह जी मोगे वालियां पासों भाई गुरदास जी दे कवितां विचों कथा सरवण करिए जी। भगत कबीर साहब के जन्म दिहाड़े के संबंध में गुरद्वारा साहब विखे संगत वालों अज श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ हुए ने, जिन्हों के एतवार को 9:15 बजे मेन हाल में भोग पाए जाएंगे। गुरु अर्जन देव महाराज तिना का शहीदी दिहाड़ा 18 जून का है। 16 जून को अखंड पाठ साहब प्रारंभ होंगे, 18 को भोग पाए जाएंगे। सारिया संगतों के चरणों में बेनती आप जी ने हाजरिया भरनिया, गुरबाणी का कीर्तन इतिहास सरवण करना जी। आओ बड़े प्यार नाल गुरमत विचारा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जीओ निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी।

लब शिकार गया छेती बोता चिर नहीं पड़के लै चलिया सतगुरु नू जन्म नाज कबीड़ी फड़के।

जम मार्ग नहीं जाना शब्द समान, जुग जुग साचे विसे, साजन सहन मिल हो संजोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग मह, दुख सुख लेख लिखाया, लिखेड़ा साहा ना टले जिहड़ा पुरब कमाया। बह साचे लिखिया अमृत बिखिया, जित लाया तित लागा, कामण यारी कामण पाए, बहुरंगी गल तागा। होछी मत पया मन होछा, गुड़सा मक्खी खाया, नामर जाद आया कल पीतर, नांगों बंद चलाया।

नर बावरे अब क्या ढोलत दीन तान तान संपे सुख दियो अरजह नीके तहाम कहो नानक सुनरी मना सिमरत काहि नाराम सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुनरी मना तिह सिमरत गत होए जेह सिमरत गत पाई तेह पाजरे तै मीत कहो नानक सुनरी मना औद घटत है नीत पांच तत को तन रचियो जान चतुर सुजान जेह ते उपजियो नान कालीन ताहे मेहमान घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक तेह पज मना पहो निद उतरह पार सुख दुख जेह पर

ज्यों सपना अरपीखना ऐसे जग कौ जान, इन मैं कछ साचू नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया

सुख में बहु संगी पहे दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपह पावह बास जतन बहुत मैं कर रहियो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदियो राख लेहो भगवान बाल जुआनी अर बिरद फोन तीन।

राग एक संग पंच बरंगन संग लाफे आठो नंदन प्रथम राग पहरो वे कर ही पंच राग नी संग उचर ही प्रथम पहर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनस लिखी की पही बारी ए पहरव की पाचो नारी पंचम हर खुद साख सुनाव है।